क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दतारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

जिस सिमरत दुख जाहे, जिस लड़ लागी है जीवी है पवजल पाई है पार, जिस लड़ लागी

जन्म नाही गुण गाव अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्द अपछाणे साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके वासा गुर कै शब्द कमल प्रगासा जो दिसे सो आसो निराशा काम क्रोध भूख प्यासा नानक बिरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सच सोई दर्शन देख भई मत पूरी अड़सठ अमजन चरणा धूरी रहो नेत्र संतोखे एकले उतारा देहा सूची हर सारा सच करणी अव अंतर सेवा मन तृप्ता अलख बेवा जय जय जाहो जय जय देखो तय तय सचा बिन बूझे जगृत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरु बिरला बूझे कोई कर कृपा रखो रखवाले बिन भूखे बिन बूझे पशु बेताले गुर का आवरण दूजा किसको देख करो अन पूजा संत हेठ प्रभु त्रिभुवन तारे आत्म चीने सो तत् विचारे साचरी दे सच प्रेम वास

जासी रचना जन्न रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै।

के रह न रजाई। आसा महला पहला सुन वड़ा आखे सब कोए केवड वड़ा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

दुख उत भुखे खाए चलिए दुख सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई।

ही कोए, ना को होवा ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, कसम में सारे ते कम जात। नानक नावे बाज सनादरा, गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई।

वासी से मुक्त से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन भर जासी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तपै जपै बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ अवरना कोई तू जुग जुग एको

को जी तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भाव है सोई वरता है जी, तू आपे करें सो होई, तुदे आपे सिरज सब पाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसा का जानोई। आसा महला चौथा।

खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय आनंदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पी जाय बिनवंत नानक इश पुन्नी।

स्वामी आप प्रभु कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरक सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हार वार देख बिगसी

सतगुरु मेरे आमद करन, गुरु रूप, गुरु स्वरूप, सात संगत जी, इस तरह सतगुरु सानू सारिआं नूं नाम दी दात बख्श के सदीव काल लई सुखां नाल भरपूर कर दें, क्योंकि जिहड़ा भी मनुख परमेश्वर दा नाम जपदा है, वाहिगुरु नूं सिमरदा है, मालक नूं चेते करदा है, उन्हों सतगुरु औखी घड़ी देखनी नहीं दिंदा। असल विच देई पाठ कई बार असीं कर दिंदे आ, पर देई पाठ नहीं है। देई नाल हुंदा है अरदास वाचक शब्द भी औखी घड़ी देखण ना देवी, पर इत्थे पाठ देई है, भाव इड़ी दे उपर बिंदी नहीं लगनी, औखी घड़ी ना देखण देई, देखण दिंदा ही नहीं, अपने बिरध की आप संभाल करता है। सतगुरु कदी भी औखी घड़ी नहीं देख दिंदा, पर यह है कि सतगुरु नूं याद करना साडा फर्ज है, सतगुरु का धन्यवाद करना साडा फर्ज है, सतगुरु के चरण परसने साडा फर्ज है, तो गुरु की गोद में आके सज के गुरबाणी सरवण करना भी साडा फर्ज है। तुसी कृपा करते हो हर रोज, बहुत बेअंत संगतां उदम करके संध्या के समय से पहुँचते हो, सतगुरु के मुबारक चरण परसते हो, गुरु की गोद में सज के गुरु की बाणी सरवण करते हो, तो सतगुरु का बिरद है, सतगुर सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हर उत्तम बाणी, गाव्या सुनिया तिन का हर थाए पावै, जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमा। तुसीं गाउंदे भी हो ते नाल सुनते भी, दो काम करते हो, दोहरा फल है, डबल कृपा है सतगुरु की। सतगुरु मेरा आमद करने इस तरह तुहानू बल बख्शन, तुसी सतगुरु की गुरबाणी का आनंद माणते रहो, अपने जीवन दीआं घड़ियां सफल करते रहो, मनुखे जामे नूं सवारदिआं होइआं अपना जीवन बतीत करो, भुल्लां चुक्कां की खिमा। आओ सारे मिल के आपां आनंद साहिब दे पाठ करीए।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

जय प्रसाद हर प्रसुख बसे सुत प्रात मीत बनता संघस जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जय प्रसाद भोगे सब रसा सकल समग्री संसाद बसा दिने हस्त पाम कर्ण नेत्र सना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे धोखमुड़ अंध व्यापे नान काढ़ लियो प्रव्यापे आदंत जो राखण हार तस्यो प्रीत न करा गवार जाकी सेवा नव निभावे दास्यो मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर स सदा हजूरे ताहु अंधा जान दूरे जाकी टहल पावे द्रगे मान दिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदाए भुलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौटी संग रचै सा छोड़ छूट संग मचै जो छड़ना सो अस्तर कर माने जो हो मन सो दूर पराने छोड़ जाए तुसका सराम करे संसहाय तुस पर हरा चंदल उतारे तोहे गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकुप मैं पतत बेकरार नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोग बचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शब सनाए कुछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुमान अंतर अगन बातन स्वाहा गल पात्र कैसे तरया था जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे करगे लिहोड़ निभाव कहाँ बुझारत बुझे डोरा निसगैया तो समझे भोरा कहाँ बिसन बद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करा नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाई सो आवे ना चीत जो बैराई ताश्यो प्रीत बरवा कै ग्रह पीतर बसे अंध केल माया रंग रसाय दृढ़कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महारोप त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो आपन घर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो बिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख नेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सकल समग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी।

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त का आदमी घोट गवावे एक भी ना दे दस भी हर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा तागो की जय साधन नमस्कार जाके मन लागा प्र मीठा सर्व सुखता हूँ मन उठा जिसने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया आगंत शापनी दे रास खात पीत भरते अंत उरास अपनी अमान कश बहुर शाल्य ज्ञानी मंदरूस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त से आगे

जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सह जय बसना, जय प्रसाद हस कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फल, जय प्रसाद ब्रह्मगत पावे, जय प्रसाद सुख सह सुमा में, ऐसा प्रभ त्याग प्रकट लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी, ब्रह्म ज्ञान की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधंधे मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारु माहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी का वह स्वफला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपाय सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बस प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध्यागत, ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का वया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंद, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

गर्भ करे अष्टपदी जिसके अंदर राज विमान सो नर्ग पाती अभिसमान जो जाने मैं जोबन मन सो उदिष्टा का जनता को कर मंद कहावे जन्म मरे भो जोन प्रमावे धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यह मुक्त आगे सुख पावे तरमंता कर कर बावे त्रिन समान का संग ना जावे बहु लश्कर मान को पर करे आस बल भीतरता का हुए विनाश सबते आप जाने बलवंत खनमे हुए जाए बसमंत किस नाम दे आप अहंकारी धर्मराय तुझ करे खुवारी गुरु प्रसाद जाकर मिटे बिमान सोजन नानक दरगे परवान ओट कर्म कराए हों तारे शरम पावै सगले विरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नर्क सुर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं दरवाए हर दरगे को कैसे गवाए आपस को जो भला कहावै तसे भला ही निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश हुए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए पर गिरबा दे बंधन दूटे गुर प्रसाद नानक छूटे सहस कटे लक उठता बितरबना आवे माया पाशे पावे अनक भोग विख्या के करे नैतर बतावे खप खप मरा बिना संतोख नहीं गौरा जाए स्वप्न मनोरथ बिरथे सब गाजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करण करावन करने हास के आद करण करावन आपे आप सदा सदा नानक जाप करण करावन करने हास के आद कहां बिचार जैसी दृष्टि करे तैसा व्यापे आप नभ सोए जो किसकी

सावकाशगाव करणे हारसे भिन्न कह हव किश होय थान थनंदर एकास होय अपने जलदाव करणे हार कौथा करे रंग आपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत गह न जाय।

सदाभिजोगनंदा दुख मै दुख नानक संभावित उसका भी मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्मय मरे संत की दुख ना सुख थे डर संत के दुखी को ना ही ठाऊ नानक संभावित अलय मिलाए संत का दुखी भी अध बीज ते टूटा है संत का दुखी कितने काज ना पहुंचाए संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइया संत का दुखी अंदर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लुथा संत के दुखी की जड़ की शनाहे अपन भी जापे ही खाए संत के दुखी को अपना राखन हार नानक संभावित अलय उबार संत का दुखी एओ मिल लाए जो जल भी हूं मछली तड़ फड़ाए संत का दुखी भूखा ने राजा जो पावक इंद्र ने त्रापै संत का दुखी छुट अकेला जो बुआड़ तिल खेत माए दुहेला संत का दुखी धर्म देरा संत का दुखी सदमिथया कहत कीर्तनंद का तुरी पया नानक जोत भावे सुई थया संत का दुखी बिगड़ू पै जाए संत का दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सह कहिए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत का दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना दृष्टा को जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके हो करने हार सदा सदा तिसको

गोचर परम निर्वाण निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत कहने न पाए। अनक भगत बंधन करे चरण कमल हृदय सिमरे सतबर हरि सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। ए हर सुभावे जन गोए अमृत पीवा अमृत सो होए सुप्रका नाही।

पृष्ठपति जब अकारे काशना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिहन्ना जापत हर सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म मोह कांग सोभत परमापन खे लाभ भतीजा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब भगत कहो किसको गनी जब एक हर आगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहोगत ठाए जब आपे आप अपनी जो तर है कब तब कमन ने डर कमन कत डर आपन चलता अब करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन था जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब गौन छुटे कौन बंधन बाधे

मानता कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीता शाल शर लगत कऊ कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावत किसे भूकम त्रिवताव। करण ग्रामन करने हार नानक करते का नाहे समार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्वगलाबे परवीन तै वेद कथेब कह कऊ चीन। जब अपने आप उतार तो सगन बसगन कहाँ विचार। ज्ञापन जापन आप नेरा दे कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप। जा शल अशेद अभे समाया ऊहा किसे व्यापत माया। आपस गुआ पिया देश ते गुण का नाही प्रवेश। ज एक है एक एक भगवंता तै कौन जिंद किस लागे चिंता। जा अपने आप आप तियारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस गुआ पे पहुंचा। ज आप रचो प्रपंच आकार।

आप छोड़ बेनती करो सासंग अगन सागर तरो अर्थन के पर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग भाज परमानंद।

हादरा दूर कथना कथी नयावे तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगां जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो।

सुपावा विण पाण के नाय करी जेते सिठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे

जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पात साहि दसवीं छपै शांत वह प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत कह।

है, शोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजांग प्रयाशंद,

सिद्धे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चरपट शांत वह प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे

चाउपाई हमरी करो हाथ दया पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपार हमरे दुष्ट सब तुम का बहु

स्वयं प्रभ आवरक्षा मेरी तुम करो सिखी उबारे सिख संग्रो दुह तेजते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रन कहता जे आय तुह तब सरनी परे दिन के दुष्ट दुख तो आय मरे

कित संयम रह कर नह जाए संयम कर्मी सह न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए नह जाए सहसा किते संयम रह कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संयम तोता जाए।

निज घर वासा होए बेशुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बुलै क्यों लीजै गढ़ बंका भाई दोवर कोट अर तेवर खाई पांच पच्चीस मोह मद मतसर आडी परमल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचै कहा करो रघुराया काम किवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान महाबड दुंधर तै मनमावासी राजा स्वाद सन्नाह टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तृष्णा तीर रहे घट भीतर इओं गाड़ लियो ना जाई।

वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्दन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध के सां सवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियाज देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाहु दान प्रसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा मान नीवा मत उची मत पद दे राखे आप काल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दिसदा सहाई दितार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो। निमाणिया दे मान निताणिया दे ताम ने ओटिया दी ओड़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर उदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत कीती है अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाशमान होके दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है अमृत वेले तो आप जिया की पावन हजूरी विच सुखमनी साहब दे पाठ पांच बाणियां दे नेतनेम मासा की वार दे कीर्तन होए उपरंत आप जिया वालों बख्श मुख वाग दी कथा विचार गुरमत विचारा छेव पौड़िया आनंद साहब का जाप होया है। कृपा करनी जी समुचियां सेवावां निभाउंदियां होया पुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल पे ढावां प्रवान करनियां धरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी आप जीआं दे भाणे विच रहण सुखां नाल बतीत होई है जनाब दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं बतीत होवे बख्शां खजानिआं विचों कड़ाह प्रसाद दी देख सज के हाजर है करी पाक साल सोज पवित्रा लाभ भोग हर राय। आप जी का सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिना मिले आमदा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल की तवै चलायो पंथ
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ।

पते। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लखवार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहे सो सियाणपा लख हो है तां इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़े तुटै पाल हुकमर जाई चलना नानक लिखिया नाल हुकमी होवन आकार हुकम न कहा जाई हुकमी होवन जी हुकम लै वडियाई हुकमी उत्तम नीच हुकम लिख दुख सुख पाई एक ना हुकमी बगसीस एक हुकमी सदा पवाई है हुकम अंदर सब को बार हुकम न कोय नानक हुकम जे बुझै ता होमे कहे ना कोय गावे को तान होवै किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खे है गावे को जी लै फिर दे है गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखै हादरा दूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुकमी हुकम चलाए राहो नानक विकसै वे परवाह साचा साहेब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखहे मंगहे देह देह दात करे दातार फिर के अगे रखी है जिद से दरबार मोह के बोलन बोली है जिस संतरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानके वै जानिया सब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनिया मन रखिए भाव दुख पर हर सो कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गोरीसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुराक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा विन भाणे के नाए करी जे तीसर ठिउ पाई वेखा विन करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे गुर की सिख सुनी गुराक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे आर जा उर्द सुनी होए नवा खंडा मिच जानी है नाल चलै सब कोय चंगा ना उर खाए कै जस कीर्त जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीटकार दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोय करै सुन आए सिद्ध पीर सुरनाथ सुन आए धरत धवले आकाश सुन आए दीप लो पाताल सुन आए पोहे न सके काल नानक भगता सदा विगास सुन आए दुख पाव का नास सुन आए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुन आए मुख सुलाहन वंद सुन आए जोग जुगत तन भेद सुन आए सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुन आए दुख पाव का नास सुन आए सत संतोख ज्ञान सुन आए अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावे मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाव का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सीख पीर पात साह सुनया अंधे पावे राह सुनया हाथ व्यस गाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाव का नास मने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मने काबे करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए
मनाए सुरत वै मन बोधाउ मनाए सगल भवन की सोधाउ मनाए मो चोटा ना खाए मनाए जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय मनाए मार्ग ठाक न पाए मनाए पात स्यों प्रगट जाए मनाए मग ना चले पंथ मनाए धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय मनाए पावे मुख द्वार मनाए परवारे साधार मनाए तरे तारे गुर सिख मनाए नानक भवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंच सुह दर राजान पंचा का गुरेग ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करना नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हुवे सचियार तबले उपर केता भार धरती होर पर और होर तिसते भार तले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए

असंख गल वढ हत्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फेराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचारू वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार संख नावा संख थावा गामा गामा संख लोआ संख है सिर पार हो अखरी नाम अखरी सोलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता ना हो विरनावे नाही को था कुदरत कवन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार भरी है हाथ पैर तन दे।

है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुद नो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पीहो सीजा इना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो बात साहो साह बात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतो सरम पद झोली ध्यान की करे बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीता आ

कूड़ी कूड़ा ठीसा आखण जोरा चुपै नह जोरा जोर ना मंगण देन ना जोरा जोर ना जीवन मरन नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोय राती रुती थिथी वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस वे धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सचा सचा दरबार तिथै सुन पंच परवा नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काय आखो करम केते पवन पाणी वै संतर केते काण महेश केते बरमे घाड़ घड़ी है रूप रंग के वेश केती

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एको अहंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईया, शब्दो तां गाव हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा, कार्ज सब सुवारना, सबना गलां सुमरा सुवामी, सो क्यों मनो वसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही, घर तीरा घर तां तीरा, सब किछ है जिस देह सो पावे, सदा सिवत सलाह तेरी, ना मन वसावे, नाम जिन कह मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सचे साहिब क्या नाही, घर तेरा साचा नाम मेरा उदारू, साज नाम उदार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन है वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुरबान कीता गुरु विटो, जिस दिया वडियाईया, कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यार, साचा नाम मेरा आधार, वाजे पंच शब्द तित घर सुभाग, घर सुभाग शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कह लागे, कहे नानक तै सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, साची लवे बिन देहन मानी, देहन मानी लवे बाजो, क्या करे विचारिया, तुद बाज समर्थ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, इस नौर थाउ नाही, शब्द लाग सुवारिया, कहे नानक लवे बाजो, क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया,

ऐसा कम मूले ना कीता जित अंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंतु ना पाया, अंतु ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा, क्या को आख बखाने। आख है ता वेख है सब तू है, जन जगते उपाया, कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया। सुर

मन वसाया। जी जनसा तो दिव पायक वेग परसने आया, लभ लोभ हंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठात ने अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली, भगता केरी बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ हंकार तज त्रिसना बहुत नाही बोलना। खन्ने हो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।

तू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता जन जीओ पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझया ता चल तो आ चलत नदरी आया। कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तो

हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सत गुर स्यों चित लाया। ए नेत्रो मेरे हर तुम्हें जो तरी हर बिन्यवरना देखो कोई हर बिन्यवरना देखो कोई नदरी हर निहालिया। इहो विस संसार तुम देख दे हर का रूप हर रूप नदरी आहे आ। गुर प्रसादी बुझे आ जा वेखार एक हर बिन्यवरना कोई। कह नानक एने तुरे अंध से सत गुर मिले देव दृष्ट होई। ए सरवणो मेरे हो सच सुनने नो पठाए सच सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ। रसना रस समानी सचिया लख वडाणी ताकी गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो सच सुनने नो पठाए।

हर हर चरण हृदय उर तारी, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारी। हर हर चरण हृदय उर तारी, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारी। रहाउ पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकरे अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने,

को सार का नाम हुआ संग तो सार जय पेंडे महंत गुब्बारा का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को ना सुयानु हर का नाम तै नाल पछानु जय महा भयान तवत बव काम ते हर के नाम की तुम्हें उपर श्याम जहां त्रिखा मन तुझे करख ते नान कर अमृत बरखे भगजना की बरतन नाम संजना के मन बसरा मर का नाम दास की ओ टर के नाम उदरे जन को टर जस करत संत दिन रात

रसना। जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चलाए। जय प्रसाद संपूर्ण फलाय। जय प्रसाद परम गत पावे। जय प्रसाद सो सह सुमावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद।

जैसे धारी ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा, मन अपने सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रव्याप करे।

सो पंडित जो मन पर बुद्ध राम नाम आत्म सोधा राम नाम सारस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हर देव सावे सो पंडित फिर जून न आवे।

अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दर के को कैसे गवे आपस को जो भला का आवे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेण जा का मानोए कहो नानक ता की निर्मल सोए।

संतन का दुखना सर्प जून पाए, संत का दुखना तृत जून किरमाए, संतन का दुखन तृष्णा में जलाए, संत का दुखन सब को शलाए, संत का दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीचन चाए, संत दुखी का था को नाय, नानक संत पावे ताओ ए

तिसे त्या वो सास ग्रास साब काश वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खे लाभ करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिसे आपन नाम देवड़ भागी नानक जान।

तिसकी कटिय जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूखा, नानक तिसे न लागे दुखा, जिसको अर ब्रह्म मन चित आवे सो

जिसो वैसो परसान अष्टपति अविनाशी ब्राह्मण में राख मानो की तू प्रीत आग ते परे नाय किछ को है सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गिहिर सुजाना।

सोई होगा। हरण परन जाका नेत्र भूरा तिसका मंत्र ना जाने होर अनंद रूप मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए घर तांके राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसरा ग्रस्त मैं।

तिसका संग सिखी उदराय नानक कर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सेकी करे प्रतपाल सिव को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी अर नाम उचराय सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख बिकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी है।

सुन कर बचन करण या का ने मन संतोखा तुम पति आने पूरा गुर आख्यो जांका मंत्र अमृत दृढ़ पेखे होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय।

तुम कमन सुनाथा। राज रंग माया विस्तारिन ते कहो कमन छुटकारा, सती राथ सुवारी झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना।

पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोह पाए कि निम कर के गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई। अर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती अर अरणीत। भली सुकरणी शोभा धनवंतिर देवसे पूर्ण गुरमंत सत्संग प्रभ देव नवास।

करो आधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण काय सुहाओ आड़ पैर प्रापेखो नेरा मिटे ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन अपदे सिर दे बसावो मन इच्छे नानक फल पावल पल दोल्यो सुहा राम नाम अंतरे उतार पूरे गुर की पूरी दिखया जिस मन बसे ते साज परीखया मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहो जाए।

संजना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सत्संग गगन सागर तरो हरदन के पर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सत्संग।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै

0: जाए।
1: कई कोट पवन पाणी बै संतर,
0: कई कोट जय सूर मंडल,
1: कई कोट शशि और सूर नखतर,
0: कई कोट देव दार इंद्र श्रेष्ठतर।
1: सगल समग्री अपने

0: अपना शीश के अपने आसन,
1: जन्म मरण को कहा विनाशन,
0: जब पूरन करता प्रभ सोए,
1: तब जन की त्रास कहो किस होए,
0: जब अभिगत गोचर प्रभ एका,
1: तब चित्र गुप्त किस

0: सोई सुख मन
1: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बार भी ओही
1: नानक दर्शन देख सब होही
0: आप सात किया।

0: निकट कौन कहिए दूर।
1: आपे आप पूरा
0: अंतर गज से आप जनाए।
1: नानक जिस जने आप बुझाए।
0: सरा

0: गत मित कही ना जाए,
1: दूसर होए जसोजी पाए,
0: इसका किया सब परवान,
1: गुर प्रसाद नानक यो जान,
0: जो जाने ते सदा सुख होए,
1: आप मिलाए ले प्रभ सोए,
0: ओ तनवंत कुलवंत

सागल समग्री तुम रे सूतर तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जान नानक दास सदा तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाए वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुए सहाए अर्जन हर गोबिंद नू सिमराऊं श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आए करना उन दे आवे ताए सब थाई होए सहाए दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां दे चढ़ी ताना रे नाल चरवाए सिखी सिदक किसां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बारे बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चमकियां झंडे बंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा समर्थता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो नमाणियां दी मान सतगुरु नताणियां दे ताण ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਊਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ

दया करहे प्रभ मेल लह खिन मह टाहे उसार। दाना तू बीना तू ही दाना कै सिर दान, दालद पंजन दुख दलना गुरमुख ज्ञान तिहान। तन गया बह चूरिय तन मह चीत गवार, तिन तन विरली तन सच संचया निर्मल नाम प्यार। तन गया ता जान देह जेरा चह रंग एक, मन दी जय सिर सौंपिय पी करते की टेक। तंदा तावत रह गए मन में शब्द आनंद, दुर्जन ते साजन पे मे भेटे गुरु गोविंद। बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार, सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार। नाना करत न छूटी है बिन गुण जंपुर जाहे, ना तिस एह ना ओह है अब गुण फिर पछताहे। ना तिस ज्ञान न ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान, बिन नावै निरपौ कहा क्या जाना अभिमान। ठाकर ही किव अपड़ा हाथ नहीं ना पार, ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार। नानक प्रयो प्रयो जे करी मेले मेलन हार, जिन बिछोड़ी सो मेल सी गुर कै हेत अपार।

फांसे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चोग चुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे ज्यों मछली फाथी जम जाल बिन गुरदाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रहे लिवलाए इव छूटे फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर पै बैराए बीर चले कर अपने बहन बरह बिरह जल जाए बाबल के कर बेटड़ी बाली बाले नेह जे लोड़े वर कामणी सतगुर सेवै तेह बिरलो ज्ञानी बुझणो सतगुर साच मिले ठाकुर हथ बड़ाइया जय पावै तै दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए पन पन कड़िए कड़ कड़ भजे टाहे उसारे उसरे टाहे सर पर सोखे पी पर पुखे समरथ वे परवाहे परम पुलाने पह दीवाने बिन पागा क्या पाइये गुरमुख ज्ञान डोरी प्रव पकड़ी जिन खिंच तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछोताइए पब्बे पाले गुरमुख बूझे ता निज घर वासा पाइए पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरिए गुर प्रसादी आपो चीने जीव त्या इव मरिए माया

श्लोका कबीर कस उठी राम की झूठा टेक न कोए राम कसौटी सो सह जो मर जीवा होए। महला तीजा क्यों कर एहो मन मारिया क्यों कर मृतक होए कहया शब्द ना मानई हो मैं छड़ै न कोए गुर

त्रै गुण बरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुकम कमावन काराउ पंडित पढ़दे जोत की ना बुझे विचारा सब किच तेरा खेल है सच सिरजन हारा जिस पावे तिस बख्स लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा मन का झूठा।

पौड़ी, रात दिन सु उपायन संसार की वर्तन, गुरमति कट चानना अनेर विनाशन, हुक्मे ही सब साजियन रविया सब बण तृण, सब किच आपे आप है गुरमुख सदा हर पण, शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई, श्लोक महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन जिनके चित मह भरम, तिस दै दित

भूखा होए तिसका भोजन नानका बिरला पाए कोई। महला तीजा हवे आगत ए ना आखियन जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बैले पेख करेन।

पौड़ी अंबर धरत बिछोड़ी है ना बिच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस बिच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा होर गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा वह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख अलख लखाई श्लोक महला तीजा रणायर माहे अनंत है कूड़ी आवै जाए भाणे चले अपने बहुती लह सजाए रणायर मह सब किच है करमी पल्ले पाए नानक नौनिध पाई जे चले ते सिर जाए महला ती जाओ सहजे सतगुर ना सेवियो बिच होमै जन्म विनाश रसना हर रसना चखियो कमल ना होयो परगास बिख खादी मन मुख मुआ माया मोह विनाश इक सहार के नाम बिना त्रिग जीवन त्रिग वास जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दासन दास ता

सब जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावे तेव हार गुणतास। पौड़ी छत्ती ही जुग गुवार सा आपे गणत कीनी आपे सिष्ट सब साजियन आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजियन पाप पुन गणत गणिनी जिस वजाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतिनी।

पौड़ी। तुद जीवड दाता नाहे किस आख सुनाई है, गुर प्रसादी पाई जिथ हो मैं जाइए। रस कस सादा बहरा सची बड़े आई है, जिसनो बख्से तिस दे आप ले मिलाई है। काट अंतर अमृत रखियना

ना जे सतगुरु पावै सो मन लैन सही कर्म करे ना जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद वचन सब सृष्ट करे ना सच्चे लाए सच लगे सदा।

आपे आखण आपे जान महला पहला हिंदू के कर हिंदू आवे सूत जनेऊ पढ़ कल पावे सूत पाए करे बुरे आई नाता तोता थाए न पाई मुसलमान करे बड़े आई बिन गुर पीरे को थाए न पाई राहुद साए उथे को जाए करनी बाजो पिसत न पाए जोगी के कर जुगत दसाई तित कारण कन मुंदरा पाई मुंदरा पाए फिरे संसार जिथे किथे सिरजन हार।

वाटड़ी तिसे भुलावै कौन, जिसे भुलाई पंध सिर तिसे दिखावै कौन। महला पहला, सो गिरही जो ने गुरह करै, जप तप संजम पीखिया करै।

बाहर मूल ना खोजिया कर माहे विदाता मन मुख हर मंदर की सार न जाननी तिन्नी जन्म गवाता सब में एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाही श्लोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख कहा कहना मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना अत प्यारा पवै खू क्यों संजम करना गुरमुख होए सो करे विचार उस अलिप्तो रहना हर नाम जपै आप उदरै उस पिछे डुब दे पी तरना नानक जो तिस भावै सो करे जो दे सो सहना महला पहला नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलवा पौसन आकिया बाकी जिन्ना रही अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवण जानना सुजई।